0: क्या एंटरटेनिंग
1: है। अच्छा बेर बा
0: दुश्मन है ना बा।
1: यस
0: मेरा तो गुड आइडिया बा।
1: गुड आइडिया
0: बाय बैक्स लाइफ।
1: बैक्स लाइफ ओके
0: मैं तो बहुत बहुत जमा पोई दूसरे
1: ओके हेलो अच्छा बे अपोया टैग
2: फेयर
1: ऑलराइट अपोया